मैं सारे काम काज करूँ, तेरे गुस्से लेके ईगो का मसाज करूँ, तेरा जुर्म का जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके FIR में लॉज करूँ। जानती है कि मैं तुझे पे चलाऊँ, ये जानती है तेरी आत्मा को मिलती शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूँ मैं तेरा झूम का। अरे बहन

0: Yeah.
1: Don't baby.
2: Here.
1: Hey, baby.
2: Control.
1: Don't RG.
2: Wait a minute.
1: Hey, RG.
3: Uh-oh.
0: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
4: शेख ये बात ठीक है।

0: सारी बातें पीछे पड़ गया मैं सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं मुझको बेबी लक्की कर बात हमारी पक्की कर
1: अहिले दिउँसोको दुई बजे
2: हजुरको रेडियो 102.5

0: हमेशा नई कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे।
1: तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगल टूल्स जिंगल टूल्स जिंगल टूल्स।